0: नुसबस्के हलिसदे।
1: ये है कमर चाय का पाकिस्तान,
2: दा चल कप समदे औ कप गर दे ओ हलिए कमर दे। कमर चाय द पाकिस्तान नंबर वन चाय, रंग बे मिसाला खंद ला जवाबा। कमर चाय द पाकिस्तान मशहूर चाय दा कुमच द पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर औ गिलगित बल्दिस्तान पर हर कोर और पर हर होटल के इस्तेमाली की।
3: नेमनी दोस्तों दल वर्तमान हम द कमर चाय वही दी हो पलाला बई मनी सो दे लाची और द बाजार न बई द कमर चाय पजे नूर बेखंद चेहरा पर महकड़ी हुई।
0: दाजल व कमर चेहरा ओडम खुदा बरा तचर त मिलाउशी।
2: दा बताता पो बटाग्राम, कुजबांडा, मेरा, बांडीगो, चतरप्लेन, ताकोट, कर्ग औ बना बाजारों ने लावा द बटाग्राम और अलाई पर हर गट और उड़ू की जनरल स्टोर की मिलावेगी। पो बटाग्राम की द पीएसओ पंप सर नजदी द सलीम एंड ब्रदर्स दुकान नहम अखस्तले शई। द कमर चाय पाड़ा नूर मालूमात पदी नंबरों तरला सकवले शई 0320-9000-920। बल नंबर दे 0314-92-490-83।
4: जहाँ मीठी बोलियाँ बोली जाए
1: वहीं बनता है कमर चाय का खूबसूरत।
5: मेदे की गैस, जलन, तेजाबियत, बदहजमी और मेदे का दर्द खत्म करे। बवासीर, खूनी उबादी, कब्ज और मतरी में मुफीद है। मालिश के फवायद, सर दर्द, कमर दर्द, पठों का दर्द और जोड़ों के दर्द से पाए निजात। बालों को लंबा, घना और सिया चमकदार बनाए। खुश्की और से और सर की जेल के दानों से निजात दिलाए। बच्चों के आसमानी हर्बल ऑयल वाहिद वो तेल है जो अंदरूनी और बैरूनी तकालीफ के लिए यकदम उपयोगी है। खुलासे के लिए कॉन्टेक्ट 0345-923-2860।
6: आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम कुदरती अज्जा से तैयार करदा जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम का रोजाना इस्तेमाल आपके चेहरे को बनाए तरोताजा। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे से दाग धब्बे, कील मुहासे, छाइयां और आंखों के गिर स्याह हल्के खत्म करे। आपके चेहरे, गर्दन और हाथों की झुर्रियां खत्म करे और आपकी उम्र को छुपाए। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम में सनब्लॉक की इजाफी खसूसियात मौजूद है जो धूप के मोजे असरात से आपके चेहरे को रखे महफूज। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की मुनफरद खुशबू और विटामिंस दे आपको ताजगी का एहसास। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से 5 दिनों में पाए निखरा, शफाफ, बेदाग, गोरा चेहरा। बेहतरीन नताइज के लिए आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से चेहरा अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की थोड़ी सी मिकदार लेकर चेहरे पर लेप करके हल्का सा मसाज करें। सुबह उठकर आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से धो लें। आसमानी कॉस्मेटिक्स जो नाम है एतमाद का।
5: आसमानी हर्बल ऑयल 100% ऑर्गेनिक, न्यू हेयर ग्रोथ, खाने के फवायद, जिस्म की इजाफी चर्बी और मोटापे को कम करे, ब्लड प्रेशर और शुगर को नॉर्मल रखे, मर्दाना कमजोरी को दूर करे, हाफजा तेज करे और खून की कमी को पूरा करे, मैदे की गैस, जलन, तेजाबियत, बदहजमी और मैदे का दर्द खत्म करे। बवासीर, खूनी उबादी, कब्ज और मतरी में मुफीद है। मालिश के फवायद, सर दर्द, कमर दर्द, पठों का दर्द और जोड़ों के दर्द से पाए निजात। बालों को लंबा, घना और सिया चमकदार बनाए। खुश्की और सिकरे और सर की जिल्द के दानों से निजात दिलाए। बच्चों के चलने में दुश्वारी को खत्म करे। वालिद के मरीजों और हर किस्म के जख्म के लिए भी मुफीद है। जिस्मानी थकावट, जहनी सुकून, हर किस्म की एलर्जी के लिए भी मुफीद है। तरीका इस्तेमाल, सुबह के वक्त निहार में 2 चम्मच 1 कप पानी या दूध में मिलाकर पिए। आसमानी हर्बल ऑयल वाहिद वो तेल है जो अंदरूनी और बैरूनी तकालीफ के लिए यकसा मुफीद है। राब्ते के लिए कॉन्टेक्ट 0345-923-2860।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: कोल्ड ड्रिंक और स्वीट सामान हम पर होल सेल रेट तला सके। प्रोप्राइटर कारी अब्दुल्ला, रबते नंबर दे 0342-098-1857 और बल नंबर दे 0309-5029-246। कप शप पे नुमयाद साते डबाइये सुर दे और कारिये स्पिन दे कप शप पे।
1: पेशावर टी दखवन मायार और द इतबार नुमदी उस पेशावर टी पाबटग्राम तोरगढ़ शंगला अलई गुजबांडा ताकोट के पवड़ो और गटो जनरल स्टोर के आसानी सिरा मिलावेगी। हम दग रेंगा पेशावर टी पहली जनरल स्टोर के हम दस्तयाब दे द पेशावर टी मैन डिस्ट्रीब्यूटर जवाद खान सिरा तासो पदे नंबर राबिता कवलिशे। व्हाट्सएप नंबर दे 0308-941-5893। मोबाइल नंबर दे 0321-592-1911। पेशावर टी पहर प्याले की खुन खुशबू और मायार।

ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर।
6: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
7: रेडियो अमन नेटवर्क, रंग अमन।

0: मैसेज दाखिले देवी, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आप कैसे हैं? मैं बहुत जबरदस्त हूँ, आप बताएं, आप ठीक है, खैरियत से हैं? बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई, बहुत शुक्रिया जी। आपको भी ईद बहुत बहुत मुबारक, जो गुजरा हुआ ईद है आपको बहुत बहुत मुबारक, ठीक है जी। एनी वे कॉल तरफ जिक्र मुसर काल को उनके सुख दिया वो दकम जने दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, रेडियो गुलाब पर खरीदा पूरा यह भी जम काल ने मिला, लेकिन काल बसेंगे मिला उसे खुदा देता सुलाबाद की। एनी वे जनाब मैसेज गुड हो पार्टिसिपेशन वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब, ये सुख रकम से ना खैर मुबारक जी। कम अख्तर है? अख्तर खुद ले रहे सही था। तेरशी भी अख्तर देता हूँ, तेरशी भी अख्तर दूँ बताओ, डेढ़ डेर मुबारक शी
1: का
0: बस वो खड़े ले दिखा
1: शाहजान ने मुड़कर
0: सर के कर सर शौक दे
1: शौक
0: के बैठेंगे के बालेंगे
1: बैठेंगे
0: बैठेंगे
1: बैठेंगे
0: नो खे तरफ था बैठेंगे के गस तरफ था
1: खे तरफ था
0: क्या ना कम खिलाड़ी कम खिलाड़ी दे देख वक्त दे
1: खिलाड़ी बाबर आजम खाते
0: बाबर आजम दा वाले
1: हाँ
0: दा वाले सही था डेरे से मन ना कहूँ जन खैसे जो के बल्ला हाफिज बिल्कुल जी ना हम दाऊ से रहो कॉलर चुनते प्रॉन्ग के काल को डेरे से मन ना कहूँ चकपल मिने उसरे शरीक गड़ला अख्तर हवाले सर रिलेटेड अपडेट्स आ गए उसरे शरीक कहूँ लो भाई दवे दे डेरे से मन ना कहूँ अख्तर को चुनके तेर शिवे दे इन वजह से कमेंट्स गुरु सैयद शबीर अहमद शिराजी सलाम की सलाम अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक हो, बहुत शुक्रिया जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आरिफ आसिफ सलाम रेडी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, दिन अलावा हैदर अफरीदी अभी मुदावाई चिल्वी अख्तर दी मुबारक शाह खैर मुबारक जी। हैदर अफरीदे उसे चल तक आई बेमड़ा पता देने लगी का ना चल तक आए भी है डेर वक्त बाद आसासो कमेंट से देगा रागल ले दर तो वो एक कुर्ब कुर्गी एक ना पदा महाल जॉब मंदी है अदा हिदर अफरीदी ने दीदिंग हर प्रोग्राम के चीज आप कॉल्स वगैरह कहोले आधा कराची ने वेंग तो कॉल्स को कहोले आयु का गाज कुंदे जिन्हें डिज जाते मिस को नो हिदर अफरीदी आयु का कथा से डिज जाते मिस कई हाँ नो बस आहो जी अगे तो पर राजे हाँ कना अगे तो पर अगे तो राजे कना मना शौत खुराजे कल नकल मना।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: Radio Aman Network, News and Information Station.
1: Radio Aman Network.
2: Pegham Aman hai. Pyar ki ek duniya lekar.
3: Mohabbat samet kar.
4: सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क
5: रेडियो अमन नेटवर्क अमन अमन
6: अमन दरुह संदरा
1: रेडियो अमन नेटवर्क
2: पैगाम अमन है
7: प्यार की एक दुनिया लेकर
3: मोहब्बत समेट कर
5: रेडियो अमन आपकी जिंदगी में
4: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4
5: नेटवर्क
4: नेटवर्क
5: रेडियो अमन नेटवर्क Run! Run!

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बडग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा। रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।
1: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
0: ग्रानो आवरिदुन को तसो आवाज आवरे द रेडियो अमन 88.4 बटग्राम। मुंग सरे उसे।

0: 920 बल नंबर दे 0314 92 490 83।
1: जहां मीठी बोलियां बोली जाए
2: वहीं बनता है कमर चाय का खूबसूरत पाकिस्तान। कमर चाय
3: आसान रोजगार द पारा शॉर्ट कोर्सेज मेडिकल फील्ड के शॉर्ट कोर्सेज कबूल द पारा बा एतमादा इदारा वर्टिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बटग्राम वकाला कोर्सेज इज द कबूल बेहतरीन मौका हेल्थ टेक्नीशियन सर्जिकल टेक्नीशियन एनेस्थीसिया टेक्नीशियन लेबोरेटरी टेक्नीशियन फार्मेसी टेक्नीशियन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन और फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन अलकानो और जिनको द पारा दाखिले शुरू दी दे सरसरा कैटेगरी बी फार्मेसी स्टोर लाइसेंस दबारा होम दाखिले शुरू दी वर्टिक्स कॉलेज बटग्राम मेडिकल फैकल्टी द खैबर पख्तूनख्वाना इलाहाक शिविदा हेल्थ फाउंडेशन के पिके न होम रजिस्टर दा डी एच क्यू अस्पताल बटग्राम के बाद क्लिनिकल ट्रेनिंग होम दर कवले कीगी मजीद मालूमात दबारा वर्टिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बटग्राम से तशरीफ रावड़े पते याद सहते वर्टिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिलमुकाबिल अल फकीर शॉपिंग मॉल नज़्द पीएसओ पेट्रोल पंप बटग्राम एमडी रहीमुल्ला यूसुफ जई सिपसरा पदी नंबर हम राबिता कौली शे 0997-310-240 मोबाइल नंबर दे 0347-955-43-27।
4: ग्रानो औरिदुन को तसो आवाज और रेडियो अमन 88.4 बटग्राम।

0: आती हूँ गुड़िया।
1: ओह जबरदस्त, ढेर बेहतरीन, डॉक्टर साहब ढेर बेहतरीन अंदाज।
2: बिल्कुल बिल्कुल ढेर खो
1: जी। ईशान दादा तो चाह खोद ले दे
0: जी,
1: चादर तो खोद ले दीदा, कम से कम दकड़े दे
0: स्कूल के,
1: स्कूल की चीज दकड़े देगा ना। और तो कल स्कूल की दस प्रोग्राम वगैरह भी आई की साख ली के ना, आई की साख ला ऐसा बगे नाख ली ऐसा बगे अखला खा डेरा मंद ने को विशाल खुशहाल हो सी खा। ओके भाई अल्लाह हाफिज जी। बिल्कुल दमुस्तर विशाल गुलाल आई चुकते प्रोग्राम ज्यादा मंद ने को अखिस्ता खंदौरी खबरी जी दी और वरसरा वरसरा पोएम चुकम दे आगे मुसरम द प्रोग्राम से जुड़ को डेरा ज्यादा मंद ने को बाय द वे। बिल्कुल बदन सर वखलु पर 0309711 8899 गुरु बलाल मंद सुखदेव द कमजोर दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर दी जीता सुखे वाले प्लीज सुख दकम से ना
3: या सिरिम द कराची ना
1: या सर प्रोग्राम के तार कर है सडे मशे पे खरा लेवा यो
3: मैं महा डॉक्टर से सलाम।
2: वालेकुम अस्सलाम
1: या सर तखे